0: Ladies and gentlemen,
1: fasten your seat belt. दिल थाम कर बैठिए। इस शानदार महफिल में अब वो सुरीली आवाज जिसने अपनी जादू भरी मधुरता से लाखों करोड़ों दिल जीत लिए हैं, जिसे सुनने के लिए आप बेताब हैं, वही आवाज, वही लाजवाब आवाज लेकर आ रहा है देश का महान कलाकार, देश का सबसे बड़ा गायक
2: लोस पंतीतोस।